ओम श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधुकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकल संशय हराय

राधा के नटवर लाल कन्हैया, गोकुल बाला गोपरिपाला, राधा के नटवर लाल कन्हैया।